0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: नमस्कार श्रोताओ, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें के स्पेन की प्रेरिती की यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट।

0: स्पेन की राजधानी में अंतिम कार्यक्रम में संत पापा लियो 14वें ने मैड्रिड में सुबह उन स्वयंसेवकों से मुलाकात की जिन्होंने दूसरों को संत पापा की यात्रा को सही मायने में जीने में मदद करने के लिए अपना समय दिया। संत पापा ने उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। इसके बाद संत पापा लियो 14वें अपनी प्रेरितिक यात्रा के दूसरे पड़ाव बार्सिलोना पहुँचे। हवाई अड्डे से संत पापा कार द्वारा दोपहर की प्रार्थना के लिए बार्सिलोना के पवित्र क्रूस और संत यूलालिया महागिरजाघर पहुँचे। सड़कों पर भीड़ से मिलने के बाद उन्होंने दोपहर की प्रार्थना की। भाषाओं के अपने ज्ञान और प्यार का इस्तेमाल करते हुए संत पापा ने कतालान और स्पानी भाषा में अपना प्रवचन दिया और सभी को दुल्हन और शरीर की छवि पर सोचने के लिए आमंत्रित किया। बार्सिलोना में अपनी पहली शाम को संत पापा लियो 14वें ने लुइस कंपनीज ओलंपिक स्टेडियम में युवाओं से मुलाकात की और तीन गवाही सुनी जिनमें हृदय परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य, हिंसा और दुख जैसे विषयों पर बातें हुई। फिर संत पापा ने उनमें से हर एक को जवाब देने के लिए समय निकाला।
1: संत पापा लियो ने अपने संदेश में कहा, निकोदेमुस की भांति हम भी रात्रि के यात्री हैं। यह सुसमाचार हमें अपने जीवन की यात्रा के बारे में एक संदेश देता है। हमारी यात्रा, हमारी चाहतें और सब कुछ जो हमारा है और जिनका अनुभव हम रोज दिन करते हैं, हमारी खुशी और पराजय, इच्छाएं और योजनाएं, हमारे जीवन की खोज अभिव्यक्तियां हैं। हम प्रेम के लिए भिक्षु हैं। हम सचमुच इसके भूखे और प्यासे हैं। हम एक गहरे अर्थ की खोज करते हैं जो हमें पोषित, प्रेरित करता और हमें अपने जीवन के रहस्य को समझने में मदद करता है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हर एक छोटे कदम में हम अपने को अपने जीवन की छाया भरी परिस्थिति से संलग्न करने को कहे जाते हैं। हम पूर्ण सत्य की कमी को पाते हैं। हम स्वयं अपने जीवन के रहस्य को पूरी तरह नहीं समझते हैं या दूसरों के लिए अपनी सच्चाई पहचानने को। हम अपने चारों ओर बने रहने वाली छिपी सच्चाई को पहचानने में सफल नहीं होते हैं और वे घटनाएं जो हमारे आंखों के सामने घटती हैं। हम एक ज्योति की खोज करते हैं जो हमारा मार्ग प्रज्वलित करती है, संत पापा ने कहा। लेकिन निकोदेमुस भी हमें विश्वास की राह के बारे में कहते हैं। यह वह पथ नहीं है जो मानवीय जीवन के अस्तित्व के समानांतर चलता हो, बल्कि ये दोनों मार्ग अपने में उलझे हुए हैं। सुसमाचार में जैसा हमने सुना, ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और उसमें वे सदा के लिए हमारे शरीर से जुड़ गए। वे सदैव पिता और हमारे संग हैं। इस भांति हमारे जीवन का रहस्य ज्योति का एक दिन की शुरुआत करती है। जहां हम रहते और जो कुछ करते हैं, हम ईश्वर की उपस्थिति और उनके अनंत आलिंगन में रहते हैं। हमारा जीवन ख्रिस्त के संग ईश्वर में गुप्त है। फिर भी कभी कभी हम विश्वास के अंधकार का अनुभव करते हैं, विश्वास की थकान को, आत्मा में थकान को, असफलता के कटुपन को और अपनी मांगों के अनुरूप खरा न उतरने के भय को, संत पापा ने कहा। प्रिय भाइयों एवं बहनों, निकोदेमुस हमें इस बात की शिक्षा देते हैं कि ये सभी रातें जो हमारे जीवन में, विश्वास की यात्रा में और हमारे इतिहास में जहां हम निवास करते हैं, एक आशीर्वाद की घड़ी, एक पुनः जन्म लेने, एक गर्भ में प्रवेश करने का पल होता है जो सदैव हमें एक नया जीवन प्रदान करता है। ये रातें हमें नंगा करती और हमें वहां ले आती हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। वे हमारे मानवीय और धार्मिक मुखौटे जिसे हम दिन में पहनते हैं ताकि कोई हमें ना पहचाने, असलियत से अलग दिखा सके। वे हमें खुले रूप में प्रस्तुत करती हैं जहां हम अपनी ज्योति और अपने छाया को प्रकट करते हैं। ये रातें हम में नम्रता को लाती हैं जिससे हम सच्चाई को अपने में देखते हैं। वे हमें इस सोच से परे ले जाती हैं कि हमारी यात्रा पहले ही पूरी हो चुकी है और हम आगे बढ़ रहे हैं, मानो कि हमें हर चीज, हर कोई और यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में भी एक स्पष्ट समझ रखते हैं। एक खालीपन जो रात के द्वारा उत्पन्न होता है, जब यह दुख या असंतोष, भ्रम या अविश्वास के रूप में होता है, हमारे लिए एक नए जीवन को प्राप्त करने का अवसर होता है, जहां हम परिवर्तन और नवीन होने, ऊपर से पुनः जन्म लेने को कहे जाते हैं, जैसे यीशु निकोदेमुस से कहते हैं। वास्तव में ईश्वर दुनिया के पाप और उसकी बेवफाई की रात का न्याय करने के लिए नहीं आए, बल्कि दुनिया को अनंत जीवन देने हेतु, उसे बचाने हेतु ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यही कारण है हम सभी रातों को दोष नहीं देने को कहे जाते हैं, ना ही अपने जीवन की रातों को, कलिसिया को, और ना ही हमारे समाज के इर्द गिर्द स्थितियों को। इसके बदले हमें रात में यात्रा करने को कहा जाता है, ईश्वर से निरंतर सवाल करने का और अपने को पवित्र आत्मा के लिए खोलने का, जैसे कि निकोदेमुस ने किया। हम रात का स्वागत करें एक असफलता की निशानी स्वरूप नहीं, लेकिन एक नए जीवन की शुरुआत के रूप में। संत पापा ने कहा कि जैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन पर चिंतन करते हैं और साथ ही रातों की हमारी यात्रा एक कलिसिया के रूप में और स्पेन के शहरों में, इसकी पुरानी और नई निर्धनता में, इसके समाज और संस्कृति में, हम अपने को पूछ सकते हैं, वे कौन सी रातें हैं जिनसे हम होकर गुजरते हैं, वे हमें क्या कहती हैं, हम कैसे उन पर प्रवेश करते हैं और नम्रता से उन्हें देखते हैं, बिना पूर्व ग्रह के, उस सच्चाई से जैसे कि हम हैं। हम अपने में क्या परिवर्तन करने को बुलाए जाते हैं, हम कहाँ अपनी नवीनता की खोज करते हैं, हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। यहाँ तक कि रात्रि के हृदय में हमारा खोजना, सवाल करना, ईश्वर से और एक दूसरे से वार्ता करना हम ना छोड़ें। आइए हम उस विश्वास के साथ चलें जो हमारे अलग अलग विचारों और समझ में तालमेल बैठाता है, ताकि हम उस सच्चाई की तलाश कर सकें जो हमें सबकी भलाई की ओर ले जाएगी। इस भांति यह देश सबों का स्वागत करने का एक स्थल बनेगा, जहां हर किसी की मानवता का सम्मान किया जाता और हर किसी को प्रेम किया जाता है, चाहे वह कोई भी हो। हम अपने को पवित्र आत्मा के लिए खोलें, निकोदेमुस की भांति ईश्वर को खोजें और उनके सुसमाचार की ज्योति का स्वागत करें, इस निश्चितता में कि हम अपने अंदर एक नए जीवन का अनुभव करेंगे, एक उपस्थिति जो हमें आशीष से भरती है, एक मुफ्त प्रेम जो हमें अंधकार से ज्योति में प्रवेश करने को मदद करता है, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि कोई भी चीज खो जाए, और अभी भी वे हमें अनंत जीवन प्रदान करने की चाह रखते हैं और हमें उस खुशी की ओर अग्रसर करना चाहते हैं जो कभी खत्म नहीं होती है। कुमारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर हमें अपने को खुला होने और पवित्र आत्मा की वायु में झकझोरे जाने की कृपा प्रदान करें।
0: बार्सिलोना में बुधवार को अपने कार्यक्रमों की शुरुआत संत पापा लियो 14वें ने बार्सिलोना में ब्रियेंस जेल के कैदियों और स्वयंसेवकों से मुलाकात करते हुए की। यह जेल 1991 में खोला गया है। शुरू में यह जगह सिर्फ पुरुष कैदियों के लिए थी, लेकिन 1993 में उसी परिसर में महिला कैदियों के लिए एक नया सेंटर खोला गया। संत पापा लियो करीब 10:45 बजे जेल पहुँचे, जहां उनका स्वागत जेल के डायरेक्टर ने किया। वे दोनों सभागार की ओर बढ़े, जहां 3 चैपलिन, कैदियों का एक दल और स्वयंसेवकों का एक दल मौजूद था। जेल निदेशक के स्वागत भाषण, एक चैपलिन और 2 महिला कैदी के साक्ष्य सुनने के बाद संत पापा लियो 14वें ने उन्हें संबोधित किया।
2: प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी के हार्दिक स्वागत के लिए धन्यवाद। मोंटसे और जोसफिना ने जो साक्ष्य हमारे साथ साझा किया, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं फादर जीसस के शब्दों की भी तारीफ करता हूँ जो संत फेलियो डे लोब्रेगेट धर्म प्रांत की ओर से जेल प्रेरिताए के चैपलिनों एवं स्वयं सेवकों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हर इंसान सिर्फ इस बात से योग्य है कि ईश्वर ने उससे चाहा, बनाया और प्यार किया है। इसलिए ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जिससे ईश्वर अपनी नजरें हमसे हटा लें। यह एक सुकून देने वाली सच्चाई है जो हर समय हमारे साथ रहती है और हमें याद दिलाती है कि उनका करुणावान प्रेम हमारे अच्छे या बुरे कामों से हमेशा बढ़कर है। पोप ने कहा,
3: Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas.
2: प्यारे भाइयों एवं बहनों, यह बात खासकर आपके लिए है जो अपनों से दूर होने का कष्ट उठाते हैं और अपने मौजूदा हालात की वजह से परेशान हैं।

0: बदलने देते हैं तो हम अपने जीवन में पाएंगे कि बीता हुआ कल भविष्य को गलत नहीं ठहराता, बल्कि हमें अपने फैसले और चुनाव बदलने का मौका देता है। आगे पोप ने कहा, आइए हम अपने हृदय में प्रभु के लिए जगह बनाएं और उनके चेहरे को खोजें। हम उनके प्यार को हमें रास्ता दिखाने दें। हम उनसे जुड़े रहें जो लगातार हमें आशा की ओर बुलाते हैं और हमें एक शानदार रास्ता दिखाते हैं जिस तक पहुंचने से कोई बाधा हमें नहीं रोक सकती। आज भी वे हमारे अंतकरण की गहराई में हमसे बात करते हैं, हमें यह जानने में मदद करते हैं कि वे हमारे बीच रहते हैं। वे सिर्फ इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम उन्हें एक मौका दें। संत पापा ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, प्यारे मित्रों, मैं आपको ईश्वर का सपना देखते रहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप में से हर एक से मैं कहता हूँ, ईश्वर आपसे वैसा ही प्यार करते हैं जैसे आप हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि आप और भी बेहतर बने। ईश्वर हम सभी को नई शुरुआत करने देते हैं, क्योंकि इंसान एवं ईसाई होने का मतलब कभी गलतियाँ ना करना नहीं होता, बल्कि बदलने, पछतावा करने, सुधार करने और सबसे बढ़कर मेल मिलाप करने एवं माफ करने की काबिलियत बढ़ाना है। और अंत में संत पापा ने उन्हें करुणा की माता मरियम की मध्यस्थता को सिपोर्ट किया और उनके लिए ईश्वर से आशीर्वाद की कामना की। उन्होंने कहा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: संत पापा लियो का अगला कार्यक्रम मोंटसेरात की माता मरियम महागिरजाघर में रोजरी प्रार्थना की अगुवाई करना था। संत पापा कार से मोंटसेरात की माता मरियम मठ के लिए रवाना हुए। मोंटसेरात की माता मरियम मठ बार्सिलोना से लगभग 40 किलोमीटर दूर और 720 मीटर की ऊंचाई पर इसी नाम के पहाड़ की ढलानों पर है। भवन निर्माण के हिसाब से मौजूदा मठ अलग अलग सदियों की इमारतों का संग्रह है। सबसे पुरानी इमारतों में 12वीं सदी के रोमन स्क्यू गिरजाघर का पोर्टल, गोथिक मठ और 14वीं एवं 15वीं सदी के मौजूदा गेस्ट हाउस के कुछ हिस्से शामिल हैं। मठ के बगल में मोंटसेरात की माता मरियम का तीर्थालय है, जिसकी शुरुआत मठ से पहले हुई थी। इसकी नींव के बाद से मठवासी हमेशा इसके रखवाले रहे हैं। संत पापा लियो गोल्फ कोर्ट से पापा मोबाइल में रास्ते भर विश्वासियों का अभिवादन और बच्चों को आशीष देते हुए मोंटसेरात की माता मरियम महागिरजाघर के सामने पहुंचे। प्रवेश द्वार पर संत पापा का स्वागत धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष जेबियर गोमेज ग्रासियस और मोंटसेरात मठ के फादर एबोट मानुएल गैश आई उरेयोस ने किया। संत पापा 14वें ने मोंटसेरात की माता मरियम मठ में महिमा के भेद पर चिंतन करते हुए रोजरी माला प्रार्थना की शुरुआत की।

रोजरी प्रार्थना के बाद संत पापा ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैं मोंतेसेरात की माता मरियम के चरणों में आकर उनकी ममता भरी मध्यस्थता पर पूरे भरोसे के साथ अपनी परमाध्यक्ष प्रेरिताई और एक ऐसी दुनिया में कलीसिया के मिशन को उन्हें सौंप सकता हूं जो न्याय और शांति की मांग कर रही है। इस पवित्र जगह की दीवारें हमें भक्ति, शुक्रगुजार होने और आशा की अनगिनत कहानियां बता सकती हैं, जो सदियों से मोंतेसेरात की ईश्वर की माता के आसपास फैली हैं। इन दीवारों ने यीशु ख्रिस्त के प्यार के लिए बहाए गए खून की भी गवाही दी है। ये इतने सारे भक्तों के दुख, सुख, खुशी और आंसुओं के रखवाले भी रहे हैं और यूरोप के सबसे पुराने क्वायर स्कूल के बच्चों के क्वायर की प्यारी आवाजें सुनी हैं। संत पापा ने याद किया कि संत पापा फ्रांसिस ने 7 अक्टूबर 2023 में मोंतेसेरात की माता मरियम के चरणों में स्वर्ण गुलाब अर्पित किया था और उन्होंने हमें इस बात को सोचने पर आमंत्रित किया था कि कैसे सैकड़ों सालों से बिना किसी भेदभाव श्रद्धालु इस तीर्थ यात्रा में, इस तीर्थालय में रोजरी प्रार्थना करने आते हैं, क्योंकि मरियम ईश्वर की माँ हर ख्रिस्तीय के जीवन का केंद्र है। उसी मौके पर उन्होंने कहा था, माँ के सामने एक व्यक्ति की सबसे अच्छी भावनाएं जागती हैं। संत पापा ने आगे कहा कि असल में माता हमें गहरे

बदलाव की ओर ले जाती हैं, जैसा उन्होंने लोयोला के संत इग्नासियस के साथ किया था, जिन्होंने इस यादगार की जगह पर कुंवारी माँ के सामने प्रार्थना में एक रात बिताने के बाद अपने शूरवीरों वाले हथियार नीचे रख दिया। यह एक ऐसा पल था जब उन्होंने यीशु ख्रीस्त की सेवा में एक नए जीवन की शुरुआत की थी। संत पापा ने कहा कि मोंटसेरात की माता मरियम, जो यीशु को एक लाचार बच्चे के रूप में अपनी गोद में संभाले हुए हैं और हमें एक दूसरे से प्यार करने के लिए भी बुला रही हैं, आइए आज हम उनके पैरों पर वह कवच रख दें जिसने धीरे धीरे हमारे दिलों को कठोर बना दिया है। आइए हम अपनी नजरें मरियम पर डालें और उनसे याचना करें कि वे हमें सिर्फ ईश्वर के हथियारों से लैस होने में हमारी मदद करें। आइए हम शांति की महारानी से प्रार्थना करें कि वे हमें दुख देने वाले शब्द, जल्दीबाजी में लिए गए फैसले, आलोचना और गपशप करना छोड़ना सिखाएं। हम अपने परिवारों में, दोस्तों के बीच, काम की जगह पर, सोशल मीडिया पर, राजनीतिक बहसों में और क्रिश्चियन समुदायों में प्यार को संजोना और उसका पालन पोषण करना भी सीखें, ताकि नफरत की जगह आशा और शांति ले सके।

संत पापा लियो 14वें का अगला कार्यक्रम शाम 4:30 बजे धर्म प्रांतीय चैरिटी और सहायता संगठनों के साथ मुलाकात है और 7:30 बजे बार्सिलोना के सगराता फमिलिया महागिरजा घर में पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करना है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: नमस्कार श्रोताओ, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें के स्पेन की प्रेरिती की यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट।

0: स्पेन की राजधानी में अंतिम कार्यक्रम में संत पापा लियो 14वें ने मैड्रिड में सुबह उन स्वयंसेवकों से मुलाकात की जिन्होंने दूसरों को संत पापा की यात्रा को सही मायने में जीने में मदद करने के लिए अपना समय दिया। संत पापा ने उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। इसके बाद संत पापा लियो 14वें अपनी प्रेरितिक यात्रा के दूसरे पड़ाव बार्सिलोना पहुँचे। हवाई अड्डे से संत पापा कार द्वारा दोपहर की प्रार्थना के लिए बार्सिलोना के पवित्र क्रूस और संत यूलालिया महागिरजाघर पहुँचे। सड़कों पर भीड़ से मिलने के बाद उन्होंने दोपहर की प्रार्थना की। भाषाओं के अपने ज्ञान और प्यार का इस्तेमाल करते हुए संत पापा ने कतालान और स्पानी भाषा में अपना प्रवचन दिया और सभी को दुल्हन और शरीर की छवि पर सोचने के लिए आमंत्रित किया। बार्सिलोना में अपनी पहली शाम को संत पापा लियो 14वें ने लुइस कंपनीज ओलंपिक स्टेडियम में युवाओं से मुलाकात की और तीन गवाही सुनी जिनमें हृदय परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य, हिंसा और दुख जैसे विषयों पर बातें हुई। फिर संत पापा ने उनमें से हर एक को जवाब देने के लिए समय निकाला।
1: संत पापा लियो ने अपने संदेश में कहा, निकोदेमुस की भांति हम भी रात्रि के यात्री हैं। यह सुसमाचार हमें अपने जीवन की यात्रा के बारे में एक संदेश देता है। हमारी यात्रा, हमारी चाहतें और सब कुछ जो हमारा है और जिनका अनुभव हम रोज दिन करते हैं, हमारी खुशी और पराजय, इच्छाएं और योजनाएं, हमारे जीवन की खोज अभिव्यक्तियां हैं। हम प्रेम के लिए भिक्षु हैं। हम सचमुच इसके भूखे और प्यासे हैं। हम एक गहरे अर्थ की खोज करते हैं जो हमें पोषित, प्रेरित करता और हमें अपने जीवन के रहस्य को समझने में मदद करता है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हर एक छोटे कदम में हम अपने को अपने जीवन की छाया भारी परिस्थिति से संलग्न करने को कहे जाते हैं। हम पूर्ण सत्य की कमी को पाते हैं। हम स्वयं अपने जीवन के रहस्य को पूरी तरह नहीं समझते हैं या दूसरों के लिए अपनी सच्चाई पहचानने को। हम अपने चारों ओर बने रहने वाली छिपी सच्चाई को पहचानने में सफल नहीं होते हैं और वे घटनाएं जो हमारे आंखों के सामने घटती हैं। हम एक ज्योति की खोज करते हैं जो हमारा मार्ग प्रज्वलित करती है, संत पापा ने कहा। लेकिन निकोदेमुस भी हमें विश्वास की राह के बारे में कहते हैं। यह वह पथ नहीं है जो मानवीय जीवन के अस्तित्व के समानांतर चलता हो, बल्कि ये दोनों मार्ग अपने में उलझे हुए हैं। सुसमाचार में जैसा हमने सुना, ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और उसमें वे सदा के लिए हमारे शरीर से जुड़ गए। वे सदैव पिता और हमारे संग हैं। इस भांति हमारे जीवन का रहस्य ज्योति का एक दिन की शुरुआत करती है। जहाँ हम रहते और जो कुछ करते हैं, हम ईश्वर की उपस्थिति और उनके अनंत आलिंगन में रहते हैं। हमारा जीवन ख्रिस्त के संग ईश्वर में गुप्त है। फिर भी कभी कभी हम विश्वास के अंधकार का अनुभव करते हैं, विश्वास की थकान को, आत्मा में थकान को, असफलता के कटुपन को और अपनी मांगों के अनुरूप खरा न उतरने के भय को, संत पापा ने कहा। प्रिय भाइयों एवं बहनों, निकोदेमुस हमें इस बात की शिक्षा देते हैं कि ये सभी रातें जो हमारे जीवन में, विश्वास की यात्रा में और हमारे इतिहास में जहां हम निवास करते हैं, एक आशीर्वाद के घड़ी, एक पुनः जन्म लेने, एक गर्भ में प्रवेश करने का पल होता है जो सदैव हमें एक नया जीवन प्रदान करता है। ये रातें हमें नंगा करती और हमें वहां ले आती हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। वे हमारे मानवीय और धार्मिक मुखौटे जिसे हम दिन में पहनते हैं ताकि कोई हमें ना पहचाने, असलियत से अलग दिखा सके। वे हमें खुले रूप में प्रस्तुत करती हैं जहां हम अपनी ज्योति और अपने छाया को प्रकट करते हैं। ये रातें हम में नम्रता को लाती हैं जिससे हम सच्चाई को अपने में देखते हैं। वे हमें इस सोच से परे ले जाती हैं कि हमारी यात्रा पहले ही पूरी हो चुकी है और हम आगे बढ़ रहे हैं, मानो कि हमें हर चीज, हर कोई और यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में भी एक स्पष्ट समझ रखते हैं। एक खालीपन, जो रात के द्वारा उत्पन्न होता है। जब यह दुख या असंतोष, भ्रम या अविश्वास के रूप में होता है, हमारे लिए एक नए जीवन को प्राप्त करने का अवसर होता है, जहां हम परिवर्तन और नवीन होने, ऊपर से पुनः जन्म लेने को कहे जाते हैं, जैसे यीशु निकोदेमुस से कहते हैं। वास्तव में ईश्वर दुनिया के पाप और उसकी बेवफाई की रात का न्याय करने के लिए नहीं आए, बल्कि दुनिया को अनंत जीवन देने हेतु, उसे बचाने हेतु ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यही कारण है हम सभी रातों को दोष नहीं देने को कहे जाते हैं, ना ही अपने जीवन की रातों को, कलीसिया को, और ना ही हमारे समाज के इर्द गिर्द स्थितियों को। इसके बदले हमें रात में यात्रा करने को कहा जाता है, ईश्वर से निरंतर सवाल करने का और अपने को पवित्र आत्मा के लिए खोलने का, जैसे कि निकोदेमुस ने किया। हम रात का स्वागत करें एक असफलता की निशानी स्वरूप नहीं, लेकिन एक नए जीवन की शुरुआत के रूप में। संत पापा ने कहा कि जैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन पर चिंतन करते हैं और साथ ही रातों की हमारी यात्रा एक कलीसिया के रूप में और स्पेन के शहरों में, इसकी पुरानी और नई निर्धनता में, इसके समाज और संस्कृति में, हम अपने को पूछ सकते हैं, वे कौन सी रातें हैं जिनसे हम होकर गुजरते हैं, वे हमें क्या कहती हैं, हम कैसे उन पर प्रवेश करते हैं और नम्रता से उन्हें देखते हैं, बिना पूर्व ग्रह के, उस सच्चाई से जैसे कि हम हैं, हम अपने में क्या परिवर्तन करने को बुलाए जाते हैं, हम कहां अपनी नवीनता की खोज करते हैं, हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। यहां तक कि रात्रि के हृदय में हमारा खोजना, सवाल करना, ईश्वर से और एक दूसरे से वार्ता करना हम ना छोड़ें। आइए हम उस विश्वास के साथ चलें जो हमारे अलग अलग विचारों और समझ में तालमेल बैठाता है, ताकि हम उस सच्चाई की तलाश कर सकें जो हमें सबकी भलाई की ओर ले जाएगी। इस भांति यह देश सबों का स्वागत करने का एक स्थल बनेगा, जहां हर किसी की मानवता का सम्मान किया जाता और हर किसी को प्रेम किया जाता है, चाहे वह कोई भी हो। हम अपने को पवित्र आत्मा के लिए खोलें, निकोदेमुस की भांति ईश्वर को खोजें और उनके सुसमाचार की ज्योति का स्वागत करें, इस निश्चितता में कि हम अपने अंदर एक नए जीवन का अनुभव करेंगे, एक उपस्थिति जो हमें आशीष से भरती है, एक मुफ्त प्रेम जो हमें अंधकार से ज्योति में प्रवेश करने को मदद करता है, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि कोई भी चीज खो जाए, और अभी भी वे हमें अनंत जीवन प्रदान करने की चाह रखते हैं और हमें उस खुशी की ओर अग्रसर करना चाहते हैं जो कभी खत्म नहीं होती है। कुमारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर हमें अपने को खुला होने और पवित्र आत्मा की वायु में झकझोरे जाने की कृपा प्रदान करें।
0: बार्सिलोना में बुधवार को अपने कार्यक्रमों की शुरुआत संत पापा लियो 14वें ने बार्सिलोना में ब्रियेंस जेल के कैदियों और स्वयंसेवकों से मुलाकात करते हुए की। यह जेल 1991 में खोला गया है। शुरू में यह जगह सिर्फ पुरुष कैदियों के लिए थी, लेकिन 1993 में उसी परिसर में महिला कैदियों के लिए एक नया सेंटर खोला गया। संत पापा लियो करीब 10:45 जेल पहुँचे, जहां उनका स्वागत जेल के डायरेक्टर ने किया। वे दोनों सभागार की ओर बढ़े, जहां 3 चैपलिन, कैदियों का एक दल और स्वयंसेवकों का एक दल मौजूद था। जेल निदेशक के स्वागत भाषण, एक चैपलिन और 2 महिला कैदी के साक्ष्य सुनने के बाद संत पापा लियो 14वें ने उन्हें संबोधित किया।
2: प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी के हार्दिक स्वागत के लिए धन्यवाद। मोंटसे और जोस्पिना ने जो साक्ष्य हमारे साथ साझा किया, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं फादर जीसस के शब्दों की भी तारीफ करता हूँ जो संत फेलियो डे लोब्रेगेट धर्म प्रांत की ओर से जेल प्रेरिताई के चैपलिनों एवं स्वयं सेवकों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हर इंसान सिर्फ इस बात से योग्य है कि ईश्वर ने उससे चाहा, बनाया और प्यार किया है। इसलिए ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जिससे ईश्वर अपनी नजरें हमसे हटा लें। यह एक सुकून देने वाली सच्चाई है जो हर समय हमारे साथ रहती है और हमें याद दिलाती है कि उनका करुणावान प्रेम हमारे अच्छे या बुरे कामों से हमेशा बढ़कर है। पोप ने कहा,
3: Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas.
2: प्यारे भाइयों एवं बहनों, यह बात खासकर आपके लिए है जो अपनों से दूर होने का कष्ट उठाते हैं और अपने मौजूदा हालात की वजह से परेशान हैं। जब आप खुद को नीच महसूस करने लगते और सोचते हैं कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तो अपनी आंखें उन पर उठाएं जो कई लोगों के माध्यम से आपको अपना प्यार और अपनापन दिखाना कभी नहीं छोड़ते। भले ही आपके जीवन के कुछ पलों में चिंता और उदासी हो, लेकिन याद रखें कि जीवन की गलतियां किसी इंसान की पहचान नहीं बनाती। संत अगस्तीन ने अपने कन्फेशंस में जब अपने जीवन के सफर को बताया तो इस बारे में बात की, अगर हम ईश्वर की कृपा पर भरोसा करते हैं और खुद को उनके द्वारा संचालित होने देते एवं बदलने देते हैं, तो हम अपने जीवन में पाएंगे कि बीता हुआ कल भविष्य को गलत नहीं ठहराता, बल्कि हमें अपने फैसले और चुनाव बदलने का मौका देता है। आगे पोप ने कहा, आइए हम अपने हृदय में प्रभु के लिए जगह बनाएं और उनके चेहरे को खोजें। हम उनके प्यार को हमें रास्ता दिखाने दें। हम उनसे जुड़े रहें जो लगातार हमें आशा की ओर बुलाते हैं और हमें एक शानदार रास्ता दिखाते हैं जिस तक पहुंचने से कोई बाधा हमें नहीं रोक सकती। आज भी वे हमारे अंतकरण की गहराई में हमसे बात करते हैं, हमें यह जानने में मदद करते हैं कि वे हमारे बीच रहते हैं। वे सिर्फ इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम उन्हें एक मौका दें। संत पापा ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, प्यारे मित्रों, मैं आपको ईश्वर का सपना देखते रहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप में से हर एक से मैं कहता हूँ, ईश्वर आपसे वैसा ही प्यार करते हैं जैसे आप हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि आप और भी बेहतर बने। ईश्वर हम सभी को नई शुरुआत करने देते हैं, क्योंकि इंसान एवं ईसाई होने का मतलब कभी गलतियां ना करना नहीं होता, बल्कि बदलने, पछतावा करने, सुधार करने और सबसे बढ़कर मेल मिलाप करने एवं माफ करने की काबिलियत बढ़ाना है। और अंत में संत पापा ने उन्हें करुणा की माता मरियम की मध्यस्थता को सपोर्ट किया और उनके लिए ईश्वर से आशीर्वाद की कामना की। उन्होंने कहा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: संत पापा लियो का अगला कार्यक्रम मोंटसेरात की माता मरियम महागिरजा घर में रोजरी प्रार्थना की अगुवाई करना था। संत पापा कार से मोंटसेरात की माता मरियम मठ के लिए रवाना हुए। मोंटसेरात की माता मरियम मठ बार्सिलोना से लगभग 40 किलोमीटर दूर और 720 मीटर की ऊंचाई पर इसी नाम के पहाड़ की ढलानों पर है। भवन निर्माण के हिसाब से मौजूदा मठ अलग अलग सदियों की इमारतों का संग्रह है। सबसे पुरानी इमारतों में 12वीं सदी के रोमन स्क्यू गिरजाघर का पोर्टल, गोथिक मठ और 14वीं एवं 15वीं सदी के मौजूदा गेस्ट हाउस के कुछ हिस्से शामिल हैं। मठ के बगल में मोंटसेरात की माता मरियम का तीर्थालय है जिसकी शुरुआत मठ से पहले हुई थी। इसकी नींव के बाद से मठवासी हमेशा इसके रखवाले रहे हैं। संत पापा लियो गोल्फ कोर्ट से पापा मोबाइल में रास्ते भर विश्वासियों का अभिवादन और बच्चों को आशीष देते हुए मोंटसेरात की माता मरियम महागिरजा घर के सामने पहुँचे। प्रवेश द्वार पर संत पापा का स्वागत धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष जेबियर गोमेज ग्रासियस और मोंटसेरात मठ के फादर एबोट मानुएल गैश आई उरेयोस ने किया। संत पापा 14वें ने मोंटसेरात की माता मरियम मठ में महिमा के भेद पर चिंतन करते हुए रोजरी माला प्रार्थना की शुरुआत की।

रोजरी प्रार्थना के बाद संत पापा ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैं मोंटसेरात की माता मरियम के चरणों में आकर उनकी ममता भरी मध्यस्थता पर पूरे भरोसे के साथ अपनी परमाध्यक्षीय प्रेरिताई और एक ऐसी दुनिया में कलीसिया के मिशन को उन्हें सौंप सकता हूं जो न्याय और शांति की मांग कर रही है। इस पवित्र जगह की दीवारें हमें भक्ति, शुक्रगुजार होने और आशा की अनगिनत कहानियां बता सकती हैं जो सदियों से मोंटसेरात की ईश्वर की माता के आसपास फैली हैं। इन दीवारों ने यीशु ख्रिस्त के प्यार के लिए बहाए गए खून की भी गवाही दी है। ये इतने सारे भक्तों के दुख, सुख, खुशी और आंसुओं के रखवाले भी रहे हैं और यूरोप के सबसे पुराने क्वायर स्कूल के बच्चों के क्वायर की प्यारी आवाजें सुनी हैं। संत पापा ने याद किया कि संत पापा फ्रांसिस ने 7 अक्टूबर 2023 में मोंटसेरात की माता मरियम के चरणों में स्वर्ण गुलाब अर्पित किया था और उन्होंने हमें इस बात को सोचने पर आमंत्रित किया था कि कैसे सैकड़ों सालों से बिना किसी भेदभाव श्रद्धालु इस तीर्थ यात्रा में, इस तीर्थालय में रोजरी प्रार्थना करने आते हैं, क्योंकि मरियम ईश्वर की माँ हर ख्रिस्तीय के जीवन का केंद्र है। उसी मौके पर उन्होंने कहा था, माँ के सामने एक व्यक्ति की सबसे अच्छी भावनाएं जागती हैं। संत पापा ने आगे कहा कि असल में माता हमें गहरे बदलाव की ओर ले जाती हैं, जैसा उन्होंने लोयोला के संत इग्नासियस के साथ किया था, जिन्होंने इस यादगार की जगह पर कुंवारी माँ के सामने प्रार्थना में एक रात बिताने के बाद अपने शूरवीरों वाले हथियार नीचे रख दिया। यह एक ऐसा पल था जब उन्होंने यीशु ख्रिस्त की सेवा में एक नए जीवन की शुरुआत की थी। संत पापा ने कहा कि मोंटसेरात की माता मरियम, जो यीशु को एक लाचार बच्चे के रूप में अपनी गोद में संभाले हुए हैं और हमें एक दूसरे से प्यार करने के लिए भी बुला रही हैं, आइए आज हम उनके पैरों पर वह कवच रख दें जिसने धीरे धीरे हमारे दिलों को कठोर बना दिया है। आइए हम अपनी नजरें मरियम पर डालें और उनसे याचना करें कि वे हमें सिर्फ ईश्वर के हथियारों से लैस होने में हमारी मदद करें। आइए हम शांति की महारानी से प्रार्थना करें कि वे हमें दुख देने वाले शब्द, जल्दीबाजी में लिए गए फैसले, आलोचना और गपशप करना छोड़ना सिखाएं। हम अपने परिवारों में, दोस्तों के बीच, काम की जगह पर, सोशल मीडिया पर, राजनीतिक बहसों में और ख्रिस्तीय समुदायों में प्यार को संजोना और उसका पालन पोषण करना भी सीखें, ताकि नफरत की जगह आशा और शांति ले सके।

संत पापा लियो 14वें का अगला कार्यक्रम शाम 4:30 बजे धर्म प्रांतीय चैरिटी और सहायता संगठनों के साथ मुलाकात है और 7:30 बजे बार्सिलोना के सगराता फमिलिया महागिरजाघर में पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करना है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: ज्योति का पहला भेद, यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: भैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का तीसरा भेद, मन परिवर्तन के आह्वान के साथ प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का चौथा भेद, प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पांचवा भेद, पास का रहस्य के सांस्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कन्हैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

हे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें के स्पेन की प्रेरिती की यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट।

कल शाम 10 जून को सग्रादा फमिलिया महागिरजा घर में मनाए गए पवित्र मिसा के साथ संत पापा लियो 14वें ने बार्सिलोना की अपनी प्रेरितिक यात्रा का दूसरा चरण समाप्त किया। पवित्र मिसा से पहले संत पापा ने संत अगस्ती के महागिरजा घर में धर्म प्रांतीय चैरिटी और सहायता संगठनों के सदस्यों से मुलाकात की। संत पापा ने रेंजो नाम के 6 साल के लड़के के लिखे गए पत्र का जवाब देने से पहले गरीबों, बुजुर्गों, प्रवासियों और पिछड़े लोगों की सेवा करने वालों के अनुभव सुने। संत पापा से रेंजो के सवालों में से एक फुटबॉल के बारे में था। हालांकि उन्होंने माना कि टेनिस उनका पसंदीदा खेल है, संत पापा ने पेरू में अपने बिताए गए दिनों के बारे में प्यार से बात की, जहां वे स्थानीय फुटबॉल टीमों के खेलों को देखते थे और सेमिनारियों के साथ भी खेलते थे। उन्होंने कहा, थोड़ा सा खेल सबके लिए अच्छा है। हमें अपने शरीर, मन और आत्मा की सेहत बनाए रखने के तरीके खोजने होंगे। संत पापा ने फुटबॉल को ही जिंदगी की एक तस्वीर के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, जिंदगी अकेले चमकने का रेस नहीं है, यह कुछ ऐसा है जो एक टीम के तौर पर खेला जाता है, और यह देखते हुए कि सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी आखिर में फेल हो जाता है अगर वह दूसरों को शामिल करने से मना कर देता है और वहां उपस्थित स्वयं सेवकों और चैरिटी करने वालों की ओर मुड़कर संत पापा ने सहयोग और सेवा की भावना दिखाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। रेंजो का एक और सवाल दादा दादी से जुड़ा हुआ था, जिनके बारे में संत पापा ने कहा, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने उन अनगिनत दादा दादी की तारीफ की जो माता पिता के काम करते समय पोते पोतियों की देखभाल करते हैं और जो चुपचाप नई पीढ़ी को विश्वास, प्यार और मूल्य देते हैं। संत पापा लियो 14वें ने बार्सिलोना महाधर्म प्रांत में किए गए काम की तारीफ की और जोर देकर कहा कि कलीसिया का उदार मिशन ऐसे समय में और भी जरूरी हो जाता है जब समाज अक्सर इंसान की पवित्र गरिमा को नजरअंदाज कर देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह गरिमा पैसे, काबिलियत और सामाजिक प्रतिष्ठा से निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हर इंसान ईश्वर की छवि में बनाया गया है और वे उससे प्यार करते हैं। संत पापा ने कहा कि इंसान कलीसिया की कामों के केंद्र में है। संत पापा ने अपना संदेश समाप्त करते हुए कहा कि वे अपने पुरोहितों के साथ अपना मिशन जारी रखें, ख्रिस्तीय आशा के भरोसेमंद गवाह बनें और अपनी सेवा के जरिए ईश्वर के राज्य के न्याय और शांति को फैलाएं। इसके बाद संत पापा लियो ने शाम को सागरदा फमिलिया महागिरजा घर में यूकारिस्तीय बलिदान अर्पित किया।

संत पापालियो 14वें ने स्पेन के अपने प्रेरित यात्रा में बार्सिलोना के साग्रादा फामिलिया महागिरजाघर में यूखारिस्तीय बलिदान अर्पित करते हुए नवनिर्मित येसु ख्रिस्त के क्रूस मीनार का उद्घाटन किया। आज साग्रादा फामिलिया का महागिरजाघर हम सबों को अपना द्वार खोलते हुए मानो यह अपनी बाहों को खोल रहा हो। इस सुंदर शहर में, इस बलि वेदी में ईश्वर के वचनों को सुनने हेतु स्वागत करता है, जो हमें ईश्वर के एक परिवार का अंग बनाता है, जहां हम यूखारिस्त में उनके जीवन द्वारा पोषित किए जाते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि यह गिरजाघर बहुत सारे पत्थरों से बनी एक इमारत है, एक घर जो एक परियोजना के हिसाब से वर्षों में निरंतर बढ़ता रहा है। हम सभी इस जीवित पत्थर के अंग हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। यह कार्य हमारे जीवन में समाहित है, जिसे ईश्वर एक उत्कृष्ट कृति के रूप में देखते हैं, जिसे हमें एक साथ करना है और जिसके लिए वे हमें सहयोग करने को बुलाते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, हम यीशु पर विश्वास करते हुए युद्ध को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। हम यीशु पर विश्वास करते हुए निर्दोषों को नहीं मार सकते हैं। हम यीशु पर विश्वास करते हुए दुखियों, रोते हुए लोगों और मुसीबतों से भागने वालों का परित्याग नहीं कर सकते हैं। आज की शाम आइए तब हम यीशु के क्रूस की याद करें, जो इस महागिरजाघर का मुकुट है। यह अंतिम व्यक्ति का क्रूस है जो प्रथम बनता है। 3 सदियों से साग्रादा फामिलिया इस साक्ष्य को प्रस्तुत करता है। जन्म के द्वारा सर्वप्रथम हमारे लिए वे अंतिम बनते हैं। अपने बलिदान, अपने दुख भोग के द्वारा वे हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। उनकी मृत्यु हमें जीवन प्रदान करती है, जिसके द्वारा वे हमें दिव्य महिमा के भागीदार बनाते हैं। जैसे हम यीशु ख्रिस्त के मीनार की प्रशंसा करते हैं, हम अपनी निगाहें उनकी ओर उठाते हैं, उनकी ओर जो हमें ईश्वर और स्वयं हमारे सच्चाई को प्रकट करते हैं। इस भांति क्रूस का मीनार हमारे लिए करुणा का एक झंडा बनता है, क्योंकि ईश्वर हमें इसी रूप में प्रेम करते हैं। मृत्यु को हमारे लिए आशा की एक निशानी में परिवर्तित कर देते हैं। यीशु के क्रूस में हमारा विश्वास अपने शिखर तक पहुंचता है। संत पापा ने कहा कि यह विश्वास है जो पत्थरों को आकार देता है और इस इमारत को अर्थपूर्ण बनाता है, जिसमें हम साथ रहते हैं। वे एक शिल्पकार हैं जिन्होंने सारे ब्रह्मांड में अपनी शानदार छाप छोड़ी है। ईश्वर के रूप में स्पष्ट मानव उनकी कलाकृति का प्रत्युत्तर देता है। इस तरह कलाकार हुनर को प्रशंसा में और सृजनात्मकता को सृष्टिकर्ता के साक्ष्य में बदल देता है। एक शिल्पकार के रूप में विश्वास के प्रेरित पूजनीय अंतोनी गाउदी ने इस स्थान का निर्माण किया, इस उद्देश्य से कि वे ईश्वर के रहस्यमय जीवन की चर्चा कर सकें। इस भांति उन्होंने हमारे लिए एक आध्यात्मिक तीर्थ प्रस्तुत किया है, जो हमें यीशु से मिलन को अग्रसर करता, जो हमारे खातिर जन्मे, मरे और पुनर्जीवित हुए। गाउदी के संग जैसे कि हम उनकी मृत्यु की सालगिरह मनाते हैं, हम इस बात की याद करते और इस संध्या बेला में उनके सहयोगियों और हितैषियों के लिए धन्यवाद देते हैं। कलाकारों और मजदूरों के सहयोग से एक अद्वितीय कलाकृति का निर्माण किया गया है, जो पत्थरों, रंगों और रोशनी से बनी एक शानदार शिक्षा को प्रस्तुत करती है। इस समय जब ख्याति इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, यह हमारे लिए और भी स्पष्ट हो जाता है कि कला और सुंदरता कैसे सुसमाचार प्रचार के खास माध्यम बनते हैं। संत पापा ने कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस गिरजाघर की सुंदरता हमें हमारे गुरु और स्वामी से उनके सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने की कला सीखने को प्रेरित करती है। अपनी निगाहें उनकी ओर उठाते हुए जो क्रूसित और पुनर्जीवित हुए, आइए हम अपने को उन्हें उठाने हेतु समर्पित करें जो गिरे पड़े हैं,
और ऐसा करते हुए हम इस बात को घोषित करेंगे कि साग्रादा फामिलिया विश्वास का सबसे ऊंचा गिरजाघर है, दुनिया की गिनती में अलग दिखने के लिए नहीं, बल्कि उन तीर्थयात्रियों की मदद करने के लिए जो कतालोनिया की तीर्थयात्रा करते हैं, जिसे क्रूस उनका मार्ग प्रशस्त करे, वैसे ही जैसे एक दीप उद्दीप्त होता है और हम दुल्हे के लौटने का इंतजार करते हैं।

0: बार्सिलोना में अपनी प्रेरित की यात्रा का दूसरा पड़ाव समाप्त करते हुए संत पापा लियो आज सुबह लगभग 7:30 बजे हवाई अड्डा जाने के लिए महाधर्माध्यक्षीय निवास से प्रस्थान किए, जहां उन्हें कुछ स्थानीय अधिकारियों से अभिवादन मिला। इसके बाद लियोन इबेरिया A320 विमान में सवार हो गए। अपनी विमान यात्रा के दौरान टेलीग्राम में संत पापा लियो ने मोरक्को के राजा मोहम्मद षष्ठम को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजी और दिल से उनका आशीर्वाद मांगा। संत पापा लियो 14वें ने पुर्तगाल गणराज्य के राष्ट्रपति अंतोनियो जोस सेगुरो को प्रेषित संदेश में पुर्तगाल के लिए भी प्रार्थना और आशीर्वाद भेजा। संत पापा 3.5 घंटे की विमान यात्रा के बाद ग्रान कनारिया ग्रैंडो हवाई अड्डे पर उतरे। अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर कनारी आइलैंड यूरोप जाने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ा समुद्री प्रवेश मार्ग है। कनारी आइलैंड में संत पापा के दौरे का पहला कार्यक्रम ग्रान कनारिया के दक्षिणी तट पर अर्गुएन ने बंदरगाह पर प्रवासी स्वागत केंद्रों के साथ मीटिंग है। इस बंदरगाह को अभी भी शर्म का बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 2020 में कोविड इमरजेंसी शुरू होने के तुरंत बाद एक हफ्ते के अंदर लगभग 3,000 प्रवासी वहां पहुंचे थे। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण किसी को भी बंदरगाह में जाने की इजाजत नहीं थी, फिर कारितास ने जहाज टूटने पर मदद करने के लिए अपने काम जारी रखे, जिसमें खाना और दवाई सप्लाई करना था। संगठन का एक स्वयंसेवक उन लोगों में शामिल होगा जो संत पापा के साथ अपनी बातें साझा करेंगे।
1: स्पेन की प्रेरित यात्रा के तीसरे पड़ाव पर 11 जून को पोप लियो 14वें ने ग्रान कैनरी के पोर्टो दी अर्गुएन में अप्रवासियों के साथ काम करने वाले संगठनों से मुलाकात की। कुछ लोगों के साक्ष्य सुनने के उपरांत मती रचित सुसमाचार से पाठ पढ़े जाने के बाद, जिसमें अंतिम महान्याय के बारे बताया गया है, संत पापा ने अपने संबोधन में कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमने अभी सुसमाचार पाठ के सबसे कठिन अंशों में से एक को सुना। हम जानते हैं कि इसी अध्याय में एक चेतावनी भी है, जिसे कोई भी विश्वासी हल्के में नहीं ले सकता। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हटो, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया। पोप ने कहा, आज समुद्र के किनारे ईश्वर का यह वचन पुष्ट हो जाता है। यहाँ बहुत सारे घायल जीवन आते हैं, जिनका लगभग सब कुछ छीन लिया जाता है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा कभी नहीं खो सकती। यहाँ सुसमाचार हमें दर्शकों की हमारी आरामदायक स्थिति से बाहर निकालता है और हमारे सामने एक भाई या बहन को रखता है जो आगंतुक है। यह हमसे पूछता है कि क्या हमने उन लोगों में मसीह को पहचाना जो रेगिस्तान, रात और समुद्र का सामना करने के बाद डर, भूख और हिंसा से घिरे हुए जहाज से उतरते हैं। पोप ने अपनी जिम्मेदारी के प्रतीक चिन्ह अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहा, आप देख सकते हैं, मैंने मछुआरे की अंगूठी पहनी है। इसका नाम ही हमें गलीलिया सागर की ओर ले जाता है, जहाँ ख्रिस्त ने पेत्रुस को बुलाया और उनसे कहा था, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ोगे। कलीसिया ने इस वाक्यांश की व्याख्या अपने मिशन की एक छवि के रूप में किया है, लेकिन यहाँ और एल हियरो जैसे जगहों पर ख्रिस्त का आदेश खास तौर पर शक्तिशाली और दर्दनाक है। यह द्वीप जो आकार में छोटा किंतु इंसानियत में बड़ा है, हजारों लोगों के आने का गवाह रहा है, जिन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया था और एक नाजुक नाव के हवाले कर दिया गया था। यहाँ लोगों को समुद्र से बचाया जाता है और पानी से बेजान लाशें निकाली जाती हैं। यही कारण है कि संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी इन बंदरगाहों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कलीसिया ऐसे जगहों को नजरअंदाज नहीं कर सकती जहां भूख, प्यास, हिंसा, डर या देश के निष्कासन जैसी स्थिति मानव प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा रहे हैं। यीशु के शिष्य रात में पुकारने वालों की चीखों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बाइबल की भाषा में समुद्र खतरे, अंधेरे और उथल पुथल की निशानी हो सकता है। आज भी इन समुद्रों में राक्षस छिपे हैं, माफिया के रूप में जो निराशा से फायदा उठाते, तस्कर के रूप में जो औरतों और बच्चों को गुलाम बनाते हैं, और उन लोगों के रूप में जिनकी उदासीनता से गरीब लोग शोषण या भुला दिए जाने के द्वारा निगल लिए जाते हैं। लेकिन संत पापा ने याद दिलाया कि समुद्र की ताकत से विश्वास कम नहीं होता। हम एक ऐसे ईश्वर में विश्वास करते हैं जो गड़बड़ी को ठीक करते, समुद्र को नियंत्रित करते और ऐसे रास्ते को भी खोल देते हैं जहां मौत हावी होने के समान लगती है। अगर ख्रिस्त समुद्र को शांत रहने का आदेश देते हैं तो कलीसिया उन लोगों के बारे में चुप नहीं रह सकती जिन्हें उसके जल में छोड़ दिया गया है। संत पापा ने टीटो और मरिया के गवाहों को लेते हुए कहा, आपके शब्द हमें दिखाते हैं कि हमारी नज़र का बदलना तब शुरू होता है जब अप्रवासी सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ एक श्रेणी या एक आंकड़ा नहीं रह जाता। तभी हम समझ सकते हैं कि वह छोटी बच्ची हमारी बेटी हो सकती है और वे चेहरे हमारे परिवार के हिस्से। तब हमारे अंतःकरण के पास कोई बहाना नहीं होता। दया छोटे छोटे कामों से शुरू होती है। मकसद सब कुछ हल करना नहीं है बल्कि सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंपना है और उन जगहों पर उपस्थित रहना है जहां लोग परेशान हैं, जहां संसाधन कम हैं, जहां कोई आम भाषा नहीं है। संत पापा ने कहा, मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो बचाव कार्य में हिस्सा लेते हैं। यौन शोषण के लिए तस्करी के शिकार ब्लेसिंग के साक्ष्य को लेते हुए पोप ने कहा, भले ही आप आज यहाँ नहीं हैं लेकिन आपकी आवाज़ यहाँ है। अपनी कहानी हमें साझा करने के लिए धन्यवाद। आपके नाम का मतलब है आशीष और यह हमें याद दिलाता है कि हर इंसान का जीवन ईश्वर का आशीर्वाद है। कोई भी इसे खरीद, बेच, इस्तेमाल या त्याग नहीं सकता क्योंकि सृष्टिकर्ता की छवि और स्वरूप हर इंसान में चमकती है। आपने हमें बताया कि आपने अपना देश इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि आप छोड़ना चाहती थीं, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। आपके शब्दों से हम उन बहुत सारे लोगों की कहानी सुनते हैं जिन्हें गरीबी, युद्ध, धमकियों या शोषण की वजह से देश छोड़ना पड़ा है। अगर दूसरों ने आपके शरीर की कीमत लगाई है तो जान लें कि ईश्वर ने आपकी अत्यधिक मूल्य को पहचानना कभी बंद नहीं किया है। आपका जीवन उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने आपको नुकसान पहुँचाया। आपका जीवन ईश्वर का है जिसने आपको एक ऐसी प्रतिष्ठा दी है जो आपसे छीना नहीं जा सकता। आप्रवासियों को संबोधित कर पोप ने कहा, प्यारे आप्रवासियों, आपसे कुछ और कहने से पहले मैं आपकी इजाज़त के आगे सिर झुकाना चाहता हूँ। आप सिर्फ संख्या या दस्तावेज नहीं हैं, आप ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पीछे परिवार और घर छोड़ा है। आपके सपने हैं जिन्हें नज़रअंदाज करने का किसी को कोई हक नहीं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन की देखरेख होनी चाहिए। अपना जीवन उन लोगों के हवाले ना करें जो सौदा करते हैं। तब कलीसिया को चुनौती देते हुए पोप ने कहा, आप प्रवासियों का स्वागत करना छोटी बात नहीं हो सकती जिससे कुछ ही स्वयंसेवकों पर छोड़ा जाए। अंत में प्रार्थना करते हुए संत पापा ने कहा, जीवन की शाम में ईश्वर जो हमारे प्यार के आधार पर हमारा न्याय करेंगे, हमें आज गरीबों और विदेशियों में उन्हें पहचानने की कृपा दें। आज यहाँ समुद्र के किनारे आने वाला हर व्यक्ति पूछता है कि हमारी मानवता में क्या बचा है। देर सवेर यह पता चल ही जाएगा कि हमने जीवन की रक्षा की या हमने उदासीनता अपनाया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इसके बाद संत पापा ग्रान कनारिया में टेनेरिफ के साथ स्थानीय कलीसिया धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों और लोक धर्मियों से मिलने के लिए संत अन्ना महागिरजाघर जाएंगे और ग्रान कनारिया के स्टेडियम में पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: नमस्कार श्रोताओ, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें के स्पेन की प्रेरिती की यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट।

कल शाम 10 जून को सग्रादा फमिलिया महागिरजा घर में मनाए गए पवित्र मिसा के साथ संत पापा लियो 14वें ने बार्सिलोना की अपनी प्रेरितिक यात्रा का दूसरा चरण समाप्त किया। पवित्र मिसा से पहले संत पापा ने संत अगस्ती के महागिरजा घर में धर्म प्रांतीय चैरिटी और सहायता संगठनों के सदस्यों से मुलाकात की। संत पापा ने रेंजो नाम के 6 साल के लड़के के लिखे गए पत्र का जवाब देने से पहले गरीबों, बुजुर्गों, प्रवासियों और पिछड़े लोगों की सेवा करने वालों के अनुभव सुने। संत पापा से रेंजो के सवालों में से एक फुटबॉल के बारे में था। हालांकि उन्होंने माना कि टेनिस उनका पसंदीदा खेल है, संत पापा ने पेरू में अपने बिताए गए दिनों के बारे में प्यार से बात की, जहां वे स्थानीय फुटबॉल टीमों के खेलों को देखते थे और सेमिनारियों के साथ भी खेलते थे। उन्होंने कहा, थोड़ा सा खेल सबके लिए अच्छा है। हमें अपने शरीर, मन और आत्मा की सेहत बनाए रखने के तरीके खोजने होंगे। संत पापा ने फुटबॉल को ही जिंदगी की एक तस्वीर के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, जिंदगी अकेले चमकने का रेस नहीं है, यह कुछ ऐसा है जो एक टीम के तौर पर खेला जाता है, और यह देखते हुए कि सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी आखिर में फेल हो जाता है अगर वह दूसरों को शामिल करने से मना कर देता है और वहां उपस्थित स्वयं सेवकों और चैरिटी करने वालों की ओर मुड़कर संत पापा ने सहयोग और सेवा की भावना दिखाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। रेंजो का एक और सवाल दादा दादी से जुड़ा हुआ था, जिनके बारे में संत पापा ने कहा, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने उन अनगिनत दादा दादी की तारीफ की जो माता पिता के काम करते समय पोते पोतियों की देखभाल करते हैं और जो चुपचाप नई पीढ़ी को विश्वास, प्यार और मूल्य देते हैं। संत पापा लियो 14वें ने बार्सिलोना महाधर्म प्रांत में किए गए काम की तारीफ की और जोर देकर कहा कि कलीसिया का उदार मिशन ऐसे समय में और भी जरूरी हो जाता है जब समाज अक्सर इंसान की पवित्र गरिमा को नजरअंदाज कर देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह गरिमा

संत पापालियो चौदहवें ने स्पेन की अपनी प्रेरित यात्रा में बार्सिलोना के साग्रादा फामिलिया महागिरजा घर में यूखारिस्तीय बलिदान अर्पित करते हुए नवनिर्मित येसु ख्रिस्त के क्रूस मीनार का उद्घाटन किया। आज साग्रादा फामिलिया का महागिरजा घर हम सबों को अपना द्वार खोलते हुए मानो यह अपनी बाहों को खोल रहा हो। इस सुंदर शहर में इस बलिवेदी में ईश्वर के वचनों को सुनने हेतु स्वागत करता है, जो हमें ईश्वर के एक परिवार का अंग बनाता है, जहां हम यूखारिस्त में उनके जीवन द्वारा पोषित किए जाते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि यह गिरजाघर बहुत सारे पत्थरों से बनी एक इमारत है, एक घर जो एक परियोजना के हिसाब से वर्षों में निरंतर बढ़ता रहा है। हम सभी इस जीवित पत्थर के अंग हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। यह कार्य हमारे जीवन में समाहित है, जिसे ईश्वर एक उत्कृष्ट कृति के रूप में देखते हैं, जिसे हमें एक साथ करना है और जिसके लिए वे हमें सहयोग करने को बुलाते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, हम यीशु पर विश्वास करते हुए युद्ध को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। हम यीशु पर विश्वास करते हुए निर्दोषों को नहीं मार सकते हैं। हम यीशु पर विश्वास करते हुए दुखियों, रोते हुए लोगों और मुसीबतों से भागने वालों का परित्याग नहीं कर सकते हैं। आज की शाम आइए तब हम यीशु के क्रूस की याद करें, जो इस महागिरजाघर का मुकुट है। यह अंतिम व्यक्ति का क्रूस है जो प्रथम बनता है। 3 सदियों से साग्रादा फामिलिया इस साक्ष्य को प्रस्तुत करता है। जन्म के द्वारा सर्वप्रथम हमारे लिए वे अंतिम बनते हैं। अपने बलिदान, अपने दुख भोग के द्वारा वे हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। उनकी मृत्यु हमें जीवन प्रदान करती है, जिसके द्वारा वे हमें दिव्य महिमा के भागीदार बनाते हैं। जैसे हम यीशु ख्रिस्त के मीनार की प्रशंसा करते हैं, हम अपनी निगाहें उनकी ओर उठाते हैं, उनकी ओर जो हमें ईश्वर और स्वयं हमारी सच्चाई को प्रकट करते हैं। इस भांति क्रूस का मीनार हमारे लिए करुणा का एक झंडा बनता है, क्योंकि ईश्वर हमें इसी रूप में प्रेम करते हैं। मृत्यु को हमारे लिए आशा की एक निशानी में परिवर्तित कर देते हैं। यीशु के क्रूस में हमारा विश्वास अपने शिखर तक पहुंचता है। संत पापा ने कहा कि यह विश्वास है जो पत्थरों को आकार देता है और इस इमारत को अर्थपूर्ण बनाता है, जिसमें हम साथ रहते हैं। वे एक शिल्पकार हैं, जिन्होंने सारे ब्रह्मांड में अपनी शानदार छाप छोड़ी है। ईश्वर के रूप में स्पष्ट मानव उनकी कलाकृति का प्रत्युत्तर देता है। इस तरह कलाकार हुनर को प्रशंसा में और सृजनात्मकता को सृष्टिकर्ता के साक्ष्य में बदल देता है। एक शिल्पकार के रूप में विश्वास के प्रेरित पूजनीय अंतोनी गाउदी ने इस स्थान का निर्माण किया, इस उद्देश्य से कि वे ईश्वर के रहस्यमय जीवन की चर्चा कर सकें। इस भांति उन्होंने हमारे लिए एक आध्यात्मिक तीर्थ प्रस्तुत किया है, जो हमें यीशु से मिलन को अग्रसर करता, जो हमारे खातिर जन्मे, मरे और पुनर्जीवित हुए। गाउदी के संग जैसे कि हम उनकी मृत्यु की सालगिरह मनाते हैं, हम इस बात की याद करते और इस संध्या बेला में उनके सहयोगियों और हिताशियों के लिए धन्यवाद देते हैं। कलाकारों और मजदूरों के सहयोग से एक अद्वितीय कलाकृति का निर्माण किया गया है, जो पत्थरों, रंगों और रोशनी से बनी एक शानदार शिक्षा को प्रस्तुत करती है। इस समय जब ख्याति इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, यह हमारे लिए और भी स्पष्ट हो जाता है कि कला और सुंदरता कैसे सुसमाचार प्रचार के

खास माध्यम बनते हैं। संत पापा ने कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस गिरजाघर की सुंदरता हमें हमारे गुरु और स्वामी से उनके सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने की कला सीखने को प्रेरित करती है। अपनी निगाहें उनकी ओर उठाते हुए जो क्रूसित और पुनर्जीवित हुए, आइए हम अपने को उन्हें उठाने हेतु समर्पित करें जो गिरे पड़े हैं। और ऐसा करते हुए हम इस बात को घोषित करेंगे कि साग्रादा फैमिलिया विश्वास का सबसे ऊंचा गिरजाघर है, दुनिया की गिनती में अलग दिखने के लिए नहीं, बल्कि उन तीर्थयात्रियों की मदद करने के लिए जो कतालुनिया की तीर्थयात्रा करते हैं, जिसे क्रूस उनका मार्ग प्रशस्त करे। वैसे ही जैसे एक दीप उद्दीप्त होता है और हम दुल्हे के लौटने का इंतजार करते हैं।

0: बार्सिलोना में अपनी प्रेरित यात्रा का दूसरा पड़ाव समाप्त करते हुए संत पापा लियो आज सुबह लगभग 7:30 बजे हवाई अड्डा जाने के लिए महाधर्माध्यक्ष निवास से प्रस्थान किए, जहां उन्हें कुछ स्थानीय अधिकारियों से अभिवादन मिला। इसके बाद लियोन इबेरिया A320 विमान में सवार हो गए। अपनी विमान यात्रा के दौरान टेलीग्राम में संत पापा लियो ने मोरक्को के राजा मोहम्मद षष्ठम को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजी और दिल से उनका आशीर्वाद मांगा। संत पापा लियो 14वें ने पुर्तगाल गणराज्य के राष्ट्रपति अंतोनियो जोस सेगुरो को प्रेषित संदेश में पुर्तगाल के लिए भी प्रार्थना और आशीर्वाद भेजा। संत पापा 3.5 घंटे की विमान यात्रा के बाद ग्रान कनारिया ग्रैंडो हवाई अड्डे पर उतरे। अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर कनारी आइलैंड यूरोप जाने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ा समुद्री प्रवेश मार्ग है। कनारी आइलैंड में संत पापा के दौरे का पहला कार्यक्रम ग्रान कनारिया के दक्षिणी तट पर अर्गुएने बंदरगाह पर प्रवासी स्वागत केंद्रों के साथ मीटिंग है। इस बंदरगाह को अभी भी शर्म का बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 2020 में कोविड इमरजेंसी शुरू होने के तुरंत बाद एक हफ्ते के अंदर लगभग 3,000 प्रवासी वहां पहुंचे थे। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण किसी को भी बंदरगाह में जाने की इजाजत नहीं थी, फिर कारितास ने जहाज टूटने पर मदद करने के लिए अपने काम जारी रखे, जिसमें खाना और दवाई सप्लाई करना था। संगठन का एक स्वयंसेवक उन लोगों में शामिल होगा जो संत पापा के साथ अपनी बातें साझा करेंगे।
1: स्पेन की प्रेरित यात्रा के तीसरे पड़ाव पर 11 जून को पोप लियो 14वें ने ग्रान कैनरी के पोर्टो दी अर्गुएन में अप्रवासियों के साथ काम करने वाले संगठनों से मुलाकात की। कुछ लोगों के साक्ष्य सुनने के उपरांत मत्ती रचित सुसमाचार से पाठ पढ़े जाने के बाद, जिसमें अंतिम महान्याय के बारे बताया गया है, संत पापा ने अपने संबोधन में कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमने अभी अभी सुसमाचार पाठ के सबसे कठिन अंशों में से एक को सुना। हम जानते हैं कि इसी अध्याय में एक चेतावनी भी है, जिसे कोई भी विश्वासी हल्के में नहीं ले सकता। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हटो, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया। पोप ने कहा, आज समुद्र के किनारे ईश्वर का यह वचन पुष्ट हो जाता है। यहाँ बहुत सारे घायल जीवन आते हैं, जिनका लगभग सब कुछ छीन लिया जाता है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा कभी नहीं खो सकती। यहाँ सुसमाचार हमें दर्शकों की हमारी आरामदायक स्थिति से बाहर निकालता है और हमारे सामने एक भाई या बहन को रखता है जो आगंतुक है। यह हमसे पूछता है कि क्या हमने उन लोगों में मसीह को पहचाना जो रेगिस्तान, रात और समुद्र का सामना करने के बाद डर, भूख और हिंसा से घिरे हुए जहाज से उतरते हैं। पोप ने अपनी जिम्मेदारी के प्रतीक चिन्ह अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहा, आप देख सकते हैं मैंने मछुआरे की अंगूठी पहनी है। इसका नाम ही हमें गलीलिया सागर की ओर ले जाता है, जहाँ ख्रिस्त ने पेत्रुस को बुलाया और उनसे कहा था, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ोगे। कलीसिया ने इस वाक्यांश की व्याख्या अपने मिशन की एक छवि के रूप में किया है, लेकिन यहाँ और एल हियरो जैसे जगहों पर ख्रिस्त का आदेश खास तौर पर शक्तिशाली और दर्दनाक है। यह द्वीप जो आकार में छोटा किंतु इंसानियत में बड़ा है, हजारों लोगों के आने का गवाह रहा है, जिन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया था और एक नाजुक नाव के हवाले कर दिया गया था। यहाँ लोगों को समुद्र से बचाया जाता है और पानी से बेजान लाशें निकाली जाती हैं। यही कारण है कि संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी इन बंदरगाहों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कलीसिया ऐसे जगहों को नजरअंदाज नहीं कर सकती जहां भूख, प्यास, हिंसा, डर या देश के निष्कासन जैसे स्थिति मानव प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा रहे हैं। यीशु के शिष्य रात में पुकारने वालों की चीखों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बाइबल की भाषा में समुद्र खतरे, अंधेरे और उथल पुथल की निशानी हो सकता है। आज भी इन समुद्रों में राक्षस सिपे हैं, माफिया के रूप में जो निराशा से फायदा उठाते, तस्कर के रूप में जो औरतों और बच्चों को गुलाम बनाते हैं, और उन लोगों के रूप में जिनकी उदासीनता से गरीब लोग शोषण या भुला दिए जाने के द्वारा निगल लिए जाते हैं। लेकिन संत पापा ने याद दिलाया कि समुद्र की ताकत से विश्वास कम नहीं होता। हम एक ऐसे ईश्वर में विश्वास करते हैं जो गड़बड़ी को ठीक करते, समुद्र को नियंत्रित करते और ऐसे रास्ते को भी खोल देते हैं जहां मौत हावी होने के समान लगती है। अगर ख्रिस्त समुद्र को शांत रहने का आदेश देते हैं तो कलीसिया उन लोगों के बारे में चुप नहीं रह सकती जिन्हें उसके जल में छोड़ दिया गया है। संत पापा ने टीटो और मरिया के गवाहों को लेते हुए कहा, आपके शब्द हमें दिखाते हैं कि हमारी नज़र का बदलना तब शुरू होता है जब अप्रवासी सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ एक श्रेणी या एक आंकड़ा नहीं रह जाता। तभी हम समझ सकते हैं कि वह छोटी बच्ची हमारी बेटी हो सकती है और वे चेहरे हमारे परिवार के हिस्से। तब हमारे अंतःकरण के पास कोई बहाना नहीं होता। दया छोटे छोटे कामों से शुरू होती है। मकसद सब कुछ हल करना नहीं है बल्कि सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंपना है और उन जगहों पर उपस्थित रहना है जहां लोग परेशान हैं, जहां संसाधन कम हैं, जहां कोई आम भाषा नहीं है। संत पापा ने कहा, मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो बचाव कार्य में हिस्सा लेते हैं। या उन शोषण के लिए तस्करी के शिकार ब्लेसिंग के साक्ष्य को लेते हुए पोप ने कहा, भले ही आप आज यहाँ नहीं हैं लेकिन आपकी आवाज़ यहाँ है। अपनी कहानी हमें साझा करने के लिए धन्यवाद। आपके नाम का मतलब है आशीष और यह हमें याद दिलाता है कि हर इंसान का जीवन ईश्वर का आशीर्वाद है। कोई भी इसे खरीद बेच इस्तेमाल या त्याग नहीं सकता क्योंकि सृष्टिकर्ता की छवि और स्वरूप हर इंसान में चमकती है। आपने हमें बताया कि आपने अपना देश इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि आप छोड़ना चाहती थी बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। आपके शब्दों से हम उन बहुत सारे लोगों की कहानी सुनते हैं जिन्हें गरीबी, युद्ध, धमकियों या शोषण की वजह से देश छोड़ना पड़ा है। अगर दूसरों ने आपके शरीर की कीमत लगाई है तो जान लें कि ईश्वर ने आपकी अत्यधिक मूल्य को पहचानना कभी बंद नहीं किया है। आपका जीवन उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने आपको नुकसान पहुँचाया। आपका जीवन ईश्वर का है जिसने आपको एक ऐसी प्रतिष्ठा दी है जो आपसे छीना नहीं जा सकता। आप्रवासियों को संबोधित कर पोप ने कहा, प्यारे आप्रवासियों, आपसे कुछ और कहने से पहले मैं आपकी इजाज़त के आगे सिर झुकाना चाहता हूँ। आप सिर्फ संख्या या दस्तावेज नहीं हैं, आप ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पीछे परिवार और घर छोड़ा है। आपके सपने हैं जिन्हें नज़रअंदाज करने का किसी को कोई हक नहीं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन की देखरेख होनी चाहिए। अपना जीवन उन लोगों के हवाले ना करें जो सौदा करते हैं। तब कलीसिया को चुनौती देते हुए पोप ने कहा, आप प्रवासियों का स्वागत करना छोटी बात नहीं हो सकती जिससे कुछ ही स्वयंसेवकों पर छोड़ा जाए। अंत में प्रार्थना करते हुए संत पापा ने कहा, जीवन की शाम में ईश्वर जो हमारे प्यार के आधार पर हमारा न्याय करेंगे, हमें आज गरीबों और विदेशियों में उन्हें पहचानने की कृपा दें। आज यहाँ समुद्र के किनारे आने वाला हर व्यक्ति पूछता है कि हमारी मानवता में क्या बचा है। देर सवेर यह पता चल ही जाएगा कि हमने जीवन की रक्षा की या हमने उदासीनता अपनाया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इसके बाद संत पापा ग्रान कनारिया में टेनेरिफ के साथ स्थानीय कलीसिया धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों और लोक धर्मियों से मिलने के लिए संत अन्ना महागिरजाघर जाएंगे और ग्रान कनारिया के स्टेडियम में पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।